Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए कुछ अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं। ये टॉपिक अच्छा है पर सुनने में कुछ आपको तकलीफ भी हो सकता है क्योंकि नाजुक टॉपिक है पर आजकल चल रहा है समाज में बहुत से लोगों के साथ ये हो रहा है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो रहा है, उस पर बच्चों पे क्या असर पड़ता है, डिवोर्स का बच्चों पे क्या असर पड़ता है, आइए जानेंगे आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। तलाक एक परिवार के लिए मुश्किल समय हो सकता है। न केवल माता पिता एक दूसरे से संबंध बनाने के नए तरीके सीख रहे हैं बल्कि वे अपने बच्चों के परवरिश के नए तरीके भी सिखा रहे हैं। जब माता पिता तलाक लेते हैं तो बच्चों पर तलाक का असर अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे तलाक के प्रति स्वाभाविक और समझदारी से प्रतिक्रिया करते हैं जबकि अन्य बच्चे बदलाव के साथ संघर्ष कर सकते हैं। बच्चे लचीले होते हैं और सहायता के साथ तलाक के संक्रमण को संकट के बजाय समयोजना के रूप में अनुभव किया जा सकता है। चूंकि तलाक में बच्चे अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वभाव, अलग अलग उम्र, इसीलिए बच्चों पर तलाक का प्रभाव भी अलग अलग होता है। सभी स्वभाव के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझकर तलाक का सामना करता है। इसे ध्यान में रखते हुए यह तलाक के बच्चों पर पड़ने वाले कुछ सबसे आम प्रभाव बताए गए हैं जिनके प्रबंधन में माता पिता की मदद कर सकता है। तलाक परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुश्किल होता है। बच्चों के लिए परिवार की बदलती गतिशीलता, इसको समझने की कोशिश करना उन्हें विचलित और भ्रमित कर सकता है। उनके दैनिक ध्यानों में ये व्यवधान बच्चों पर तलाक के प्रभाव में से एक उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में देखा जा सकता है। That means it will affect their academics. बच्चे जितने अधिक विचलित होंगे उतने ही अधिक संभावना है कि वो अपने स्कूल के काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। शोध से पता चला है कि तलाक बच्चों को सामाजिक रूप से भी प्रभावित कर सकता है। जिन बच्चों का परिवार तलाक से गुजर रहा है उन्हें दूसरों से घुलने मिलने में कठिनाई हो सकती है और उनका सामाजिक संपर्क कम हो सकता है। तलाक के कारण बच्चों पर उसका असर पड़ सकता है क्योंकि उन्हें बार बार बदलाव के साथ तालमेल बिठाना सिखाई पड़ती है। नए परिवार की गतिशीली, नया घर या रहने की स्थिति, स्कूल, दोस्त और बहुत कुछ, इन सभी का असर हो सकता है। तलाक एक परिवार के लिए कई तरह की भावनाओं को सामने ला सकता है और इसमें शामिल बच्चे भी इससे अलग नहीं है। नुकसान, गुस्सा, भ्रम, चिंता और कई अन्य भावनाएं सभी इस संक्रमण से आ सकती है। तलाक बच्चों के अनुभूति और भावनात्मक रूप से संवेदनाशील महसूस कर सकता है। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बच्चों को अपनी भावनाओं को बेहतर निकालने के लिए एक आउटलेट की आवश्यकता होती है, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वे बात कर सके, कोई ऐसा व्यक्ति जो उनकी बात सुन सके। बच्चे तलाक के प्रभावों को अपनी भावनाओं को संसाधित करने के तरीके महसूस कर सकते हैं। कुछ मामले में जहां बच्चे अभिभूत महसूस करते हैं और तलाक के दौरान महसूस होने वाले प्रभाव पर प्रतिक्रिया करना नहीं जानते, वे क्रोधित या चिड़चिड़ा हो सकते हैं। उनका गुस्सा कई तरह के कथित कारणों पर निदर्शित हो सकता है।

तलाक की प्रतिक्रिया से गुजर रहे बच्चे अपने माता पिता, खुद पर, अपने दोस्तों और दूसरों पर गुस्सा दिखा सकते हैं, जबकि कई बच्चों के लिए ये गुस्सा कई हफ्तों के बाद खत्म हो जाता है। अगर ये बना रहा तो ये जानना जरूरी है कि ये बच्चों पर तलाक का एक स्थायी प्रभाव हो सकता है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि उनके परिवार में तलाक क्यों हो रहा है। वे कारणों की तलाश करेंगे या सोचकर कि क्या उनके माता पिता अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते या उन्होंने कुछ गलत किया है। अपराध बोध की ये भावनाएं बच्चों पर तलाक का एक बहुत ही सामान्य प्रभाव है, लेकिन ये कई अन्य समस्याओं को भी जन्म दे सकती है। अपराध बोध दबाव बढ़ाता है, अवसाद, तनाव और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। इससे अपनी भूमिका को समझने के लिए बच्चों को संदर्भ और परामर्श प्रदान करना अपराध बोध की इन भावनाओं को कम करने में मदद कर सकती है। जब बच्चे ऐसे कठिन समय से गुजरते हैं तो अनसुलझे संघर्ष भविष्य में अप्रत्याशित जोखिम पैदा कर सकते हैं। शोध से पता चला है कि पिछले 20 सालों में तलाक का सामना करने वाले बच्चों में अपराध में भाग लेने, विनाशकारी व्यवहार के जरिए विद्रोह करने की संभावनाएं ज्यादा होती है, जो बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाना है। ज्यादातर बच्चों ने बताया कि उन्हें धूम्रपान की आदत लग गई है या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का इस्तेमाल करने लगे हैं। इन मुद्दों से निपटना शारीरिक समस्याओं सहित कई तरह के परेशानियों का कारण बन सकता है। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चे, वे बीमारी की संभावना अधिक हो सकती है, जो कई कारकों को और कई कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें सोने में कठिनाई भी शामिल है। इसके अलावा अवसाद के लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य की हानि और बिगड़ते स्वास्थ्य के लक्षण और भी बढ़ सकते हैं। तलाक का अनुभव करने वाले बच्चों को अपने रिश्ते में होने पर तलाक की संभावना अधिक होती है। कुछ शोध संकेत देते हैं कि तलाक की ये प्रवृत्ति गैर तलाकशुदा परिवारों से आने वाले बच्चों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक हो सकता है। फिर भी जबकि ये तलाक के बच्चों पर होने वाले कुछ संभावित प्रभाव है, ये किसी भी तरह से पूर्ण या पत्थर पर लिखे हुए नहीं है। अधिक से अधिक परिवार समझ रहे हैं कि तलाक उनके बच्चों के साथ साथ उनके लिए भी कितना तनावपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम सुन चुके हैं कि क्या होता है, बच्चों पर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए सोच समझ के कदम उठाइए। जो भी है, अपने फैमिली को आप इसमें इन्वॉल्व कीजिए, बड़ों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर इनसे भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप प्रोफेशनल काउंसलिंग, प्रोफेशनल हेल्प तो हमेशा ही सकते हैं। ध्यान रखें, जो भी निर्णय आप लेते हैं इसका असर सीधा अपने बच्चों पर पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही, अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। कॉल और मैसेजेस ऑन 09515227039, दैट 09515227039, और राइट टू अस एट feedbackamc1@gmail.com, दैट्स feedbackamc1@gmail.com। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस एट आर सोशल मीडिया हैंडल spice.lamhe.vanilla, दैट्स spice.lamhe.vanilla। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: किसी पीढ़ी के मन से जुड़ने के लिए किसी साहित्य या कहानी की भाषा में कोई बदलाव नहीं किया जाता। पीढ़ी से जुड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, ना कि ये कि कहानी या कि साहित्य अपने आप में समर्थ, प्रभावी और विस्तृत हो। भाषा को आप पीढ़ी के हिसाब से या समय के हिसाब से नहीं बदल सकते, बेशक कथ्य को बदल सकते हैं। कथ्य इसलिए बदल जाता है कि समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, राजनीति बदलती है और चीजों के विश्लेषण और उसके अर्थ बदलते हैं। यदि नई पीढ़ी इनको समझती है तो वो अपने आप साहित्य से और कहानी से जुड़ेगी, और यदि इन मुद्दों को नहीं समझती तो वो कुछ भी करने पर इससे नहीं जुड़ेगी। प्रचार और प्रसार तो किसी भी भाषा का तब होता है जब वो रोजी रोटी से जुड़े या कामकाज की भाषा बने, या फिर लोग उस भाषा को स्वयं बनाए और स्वीकार करें, जैसा कि उर्दू के साथ उसने किया और जिसे अब हम हिंदुस्तानी के नाम से जानते हैं। ये वही भाषा है जिसे लोग ने खुद गढ़ा। इसमें विदेशी शब्द भी हैं, इसमें फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली भी हैं, इसमें बंगला, मराठी भी हैं, संस्कृत के शब्द भी हैं, अवधी, भोजपुरी, ब्रज, इनके शब्द भी हैं। ये भाषा लोक की भाषा है और इसका प्रचार प्रसार अपने आप होता चलेगा। बाकी इसके अलावा सिनेमा ये काम करता है, रेडियो ये काम करता है, दूरदर्शन ये काम करता है, मनोरंजन के साधन ये काम करते हैं जो सब जगह पहुंचते हैं। साहित्य का ये काम मुख्य रूप से नहीं होता और वो ये काम इसलिए करता भी नहीं।
1: हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है। उन्होंने केवल कविता नहीं लिखी, केवल नाटक नहीं लिखे, बल्कि उन्होंने भाषा को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उनका योगदान बड़ा महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी में नए विचारों के लिए मंच तैयार किया। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति हम सबको याद आती है, निज भाषा उन्नति यह है, सब उन्नति को मूल। आज भी हिंदी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को मजबूत बनाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के बाद भी हिंदी की मशाल बुझी नहीं। सन 1993 में क्वींस कॉलेज वाराणसी के तीन विद्यार्थियों श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने हिंदी भाषा, साहित्य और देवनागरी लिपि की उन्नति के लिए नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रयासों से हिंदी के विकास को नई दिशा मिली। देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार, हिंदी साहित्य के संरक्षण और शब्द संपदा को समृद्ध करने में इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी के अनेक दुर्लभ ग्रंथों का संग्रह और प्रकाशन हुआ यहीं से। शब्दकोश और साहित्यिक सामग्री तैयार की गई। इस तरह नागरी प्रचारिणी सभा ने हिंदी को केवल बोलचाल की भाषा से आगे बढ़ाकर ज्ञान, साहित्य और विचार विमर्श की सशक्त भाषा बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। हिंदी के विकास में पत्रकारिता ने बड़ी भूमिका निभाई। उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। इसके प्रकाशक और संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। 1826 को कलकत्ता से इसका पहला अंक निकला। कल्पना कीजिए, उस समय न इंटरनेट था, न सोशल मीडिया, न टेलीविजन। एक छपा हुआ पन्ना ही विचारों को दूर दूर तक ले जाने का माध्यम था। इसलिए हिंदी पत्रकारिता का इतिहास केवल समाचारों का इतिहास नहीं है, ये जागती हुई भाषा और जागते हुए समाज का इतिहास भी है। हिंदी की यात्रा में कितने ही साहित्यकार आए, कबीर, सूर, तुलसी से लेकर मुंशी प्रेमचंद तक का हिंदी में रचा गया साहित्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह था। मुंशी प्रेमचंद ने किसान, मजदूर, स्त्री, गरीब और मध्यम वर्गीय जीवन की पीड़ा को साहित्य की आवाज बनाई। गोदान का होरी हो या कफन का संसार, प्रेमचंद ने हिंदी को केवल मनोरंजन की भाषा नहीं रहने दिया, उन्होंने उसे समाज का आईना बना दिया। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान पर फिल्म बनी गोदान, जिसके निर्देशक थे त्रिलोक जेटली। आइए यहाँ पर गोदान फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: आगे पत वसरी के टोले मनवा के ही यार में उठे तहिलो पुरुआ के झोंकवा में आयो रे संदेश वाकी चल आज देश वाकियो।
1: इसके बाद हिंदी में आई एक नई संवेदना महादेवी वर्मा। उनकी लेखनी में करुणा थी, संवेदना थी और स्त्री मन की गहरी अनुभूति। महादेवी वर्मा का एक गीत फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल था, जिसे बड़े ही सुंदर ढंग से छाया गांगुली ने स्वर दिया और जयदेव का संगीत था।

मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र और समाज की चेतना को स्वर दिया। रामधारी सिंह दिनकर ने ओज भरा। सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब ने हिंदी कविता को अलग अलग रंग दिए और इसीलिए हिंदी साहित्य कोई एक

रंग की तस्वीर नहीं, ये तो रंगों से भरी एक विशाल चित्रशाला है। यहाँ आपको सुनवा रहे हैं जयशंकर प्रसाद की रचना, जिसे आशा भोसले ने गाया है।

आज हिंदी भारत की सीमाओं से बहुत आगे पहुंच चुकी है। मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, गुयाना, त्रिनिदाद, टोबैको जैसे अन्य कई देशों में भारतीय मूल के समुदायों के बीच हिंदी की अपनी अहम उपस्थिति है। डिजिटल युग ने तो हिंदी को एक नया आकाश दे दिया। आज मोबाइल के स्क्रीन पर हिंदी पढ़ी जा रही है, हिंदी में ब्लॉग लिखे जा रहे हैं, हिंदी के पॉडकास्ट सुने जा रहे हैं, फिल्में और वेब सीरीज हिंदी में देखी जा रही है। हिंदी किताबों के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी सांस लेती है। फिल्मी गीतों ने हिंदी के शब्दों को उन श्रोताओं तक भी पहुंचाया जिन्होंने शायद कभी कविता की किताब भी न खोली हो। और यहाँ हमें याद आते हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविता मंच से लेकर सिनेमा तक पहुंची, वो हैं बाल कवि वैरागी। उनके साहित्य में मालवा की मिट्टी की खुशबू थी, लोक जीवन की सहजता थी और शब्दों में आत्मीय मिठास। फिल्म रेशमा और शेरा के लिए उन्होंने लिखा ये गीत।

0: ये गीत केवल एक फिल्मी गीत बनकर नहीं रह गया दोस्तों, उसमें राजस्थान की लोक संस्कृति, प्रेम और प्रकृति का ऐसा सम्मोहन था कि गीत सुनते ही लगता है जैसे रेगिस्तान की रात में चांद उतर आया हो। बालकवि वैरागी ने दो बूंद पानी, वीर छत्रसाल, क्षितिज, रानी और लालपरी, जादू टोना और अनकही जैसी फिल्मों के लिए भी गीत लिखे। अनकही में उनका गीत मुझको भी राधा बना ले नंदलाल बहुत ही पसंद किया गया। हर दौर में कवियों का कविता के साथ साथ गीतकारी का सफर चलता रहता है और कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहते हैं। जाने माने लेखक, फिल्म समीक्षक, गीतकार और लता सुरगाथा के रचयिता यतीन्द्र मिश्र ने अपने विचार साझा किए हैं।
1: जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, हिंदी में हजारों किताबें आई। थोड़ा सा अगर बढ़ के हम 25 से 30 साल का दायरा करें तो मैंने कुछ कैटेगरीज में विभाजित किया जो मुझे हमेशा प्रेरित करती हैं किताबें। उसमें अगर हम नॉन फिक्शन या कथेतर के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि सर्वाधिक जो अच्छी किताबें थी, जिनका आज भी असर है भाषा के स्तर पर, जिनका एक सकारात्मक संदेश है, जो किसी समाज के किसी तबके की या किसी विचार की बात करती हैं, उनमें सबसे बड़ी किताब मुझे लगती है आज भी खड़े हैं तालाब, अनुपम मिश्र की, जो जल संरक्षण पर है और जो शायद पहली किताब है उस पर।
0: जी जी।
1: दूसरी किताब शिखर पाठक की दास्ताने हिमालय मुझे लगती है भाषा के स्तर पर भी और हिमालय को समझने के लिए, उस वनखंड को और उस पूरे पहाड़ को समझने के अर्थ में। और तीसरी किताब जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगती है वो है स्वदेश दीपक की मैंने मांडू नहीं देखा।
0: क्या बात है।
1: और अगर हम कविता संग्रह पे आए, दो मास्टर पीसेस मुझे लगते हैं, एक केदारनाथ सिंह का टॉलस्टॉय और साइकिल और दूसरा कुंवर नारायण का कुमार जीव, बहुत बड़ा दार्शनिक ढंग का आख्यान है। और बिल्कुल इधर हाल के कुछ वर्षों में प्रकाशित डॉक्टर विनय कुमार की श्रेयसी, जो सरस्वती नदी को आधार बना के ढेर सारी कविताएं उस पर लिखी गई। इसी तरीके से अगर हम चले उपन्यासों की ओर तो मुझे तीन उपन्यास बहुत बहुत समझ में आते हैं। पहला है अलका सरावगी का शेष कादम्बरी, दूसरा है अनामिका जी का त्रिनधरी ओठ, जो सीता को सीता पत्र लिखती हैं और राम के संदर्भ में पूरा रामायण का आख्यान बताती हैं, और मनीषा कुलश्रेष्ठ का त्रिमाया, जो मातृसत्तात्मक समाज को लेकर के पूरी बात करती है। इसके अलावा और आलोचनात्मक किताबें या नॉन फिक्शन किताबों में मुझे अनंत विजय की मार्क्सवाद का आदर्शत्व बहुत समझ में आती है। इस अर्थ में कि मार्क्सवाद की एनालिसिस है वो, और वो कोई आलोचना नहीं है, लेकिन वो एक पूरे ढंग से एक पड़ताल करती है, वो सारी बातें दिखाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोपान जोशी की एक किताब है जल थल मल, और वो पूरी तरह से गांधीवादी रहे हैं और किस तरीके से मैला ढोने को लेकर के पूरी किताब लिखी गई है। दो किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं, हालांकि दोनों हिंदी में अनुवादित हुई और बेहद चर्चित हुई। एक आत्मकथा है बेबी हालदार की, आलो अंधारी, दूसरा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर का अनुवाद अग्नि की उड़ान, जिसका उर्दू तर्जुमा भी और ऑडियो बुक भी बनाई गुलजार साहब ने परवाज के नाम से। तो मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसी किताबें हैं जो तुरंत याद आती हैं। बाकी दार्शनिक पक्षों को लेकर, राजनीतिक पक्षों लेके बेहद सुंदर किताबें लिखी गई हैं। राम बहादुर राय ने एक किताब लिखी थी रहबरी के सवाल, तो वो किताब है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से संवाद पर। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है पॉलिटिक्स के थ्रू पूरे भारतीय परिदृश्य को समझने का। और वैसे तो हमेशा से जो महान किताबों का मामला है, मैं मैला आंचल, गोदान, राग दरबारी, निर्मल वर्मा की वेदिन, धुन से उठती धुन, मेरी सबसे फेवरेट ऑल टाइम फेवरेट हिंदी किताब अगर कोई है तो निर्मल वर्मा की दाढ़ी और संस्मरणों की किताब है धुंध से उठती धुन। मैं उसे बिल्कुल गीता या रामायण की तरह, भाष्य की तरह देखता हूँ। और अगर क्लासिक लिटरेचर में चले जाएं तो भारत सावित्री वासुदेव शरण अग्रवाल की जो तीन वॉल्यूम में टीका है महाभारत की, उसे जरूर पढ़ना चाहिए कम से कम नई जनरेशन को, जिसे जेन ज़ी कहते हैं। और उसी तरीके से रामायण का काव्य मर्म या हिंदी भाषा दर्शन की टीका विद्यानिवास मिश्र की पढ़नी चाहिए, और सारी किताबें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पढ़नी चाहिए।
0: जी जी।
1: और राहुल जी की किताब वोल्गा से गंगा, तो ये सब किताबें ऐसी हैं जो हिंदी का परिदृश्य बुनती हैं। और एक बहुत इम्पोर्टेंट किताब है अच्छी हिंदी, डॉक्टर रामचंद्र वर्मा की,
0: जी
1: अच्छी
0: जी।
1: हिंदी कैसे सीखें, पढ़ें, समझें, ये बातें। जैसे हम सांस लेते हैं तो जीवन पाते हैं, किताबें पढ़ते हैं तो हमारी सांसें परिष्कृत होती हैं।
0: बिल्कुल। और हमें नैनन में आन बान के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
1: नैनन में आन बान मैंने बिल्कुल युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए एक किताब लिखी, उसमें 12 मूर्धन्य शास्त्रीय संगीतज्ञों पर लेख हैं, जिसमें पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर, कुमार गंधर्व, भीमसेन जोशी, केसर भाई केरकर, रसूलन बाई, बेगम अख्तर, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के बारे में निबंध है।

0: सिंगर बन रहा हो या शास्त्रीय संगीत रागदारी में सीख रहा हो, उसे ये मन कर जाए कि हमें रसूलन भाई की ये ठुमरी सुननी चाहिए, या हमें बड़े गुलाम अली खां का ये दादरा सुनना चाहिए, या हमें पंडित कुमार गंधर्व का ये निर्गुण सुनना चाहिए, तो वो किताब एक रीडर की तरह, एक सहायिका की तरह आपके साथ चलती। और मैं ये जरूर कहूंगा जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा कि किसी भी किताब को, किसी भी कलाकृति को, किसी भी संगीत को, किसी भी सिनेमा को, किसी भी रचनात्मक कार्य को खारिज करने से पहले उसे एक बार देखें, उसे बढ़ते उसके साथ हम कदम चले, सुनी सुनाई बातों पर, रिव्यू पर, या इसलिए कि फला ने इसकी चर्चा नहीं की तो हमें नहीं देखना चाहिए, इस तरह का कोई निर्णय ना ले। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, आपके अकेलेपन की साथी, और वो आपको कहीं ना कहीं से संस्कारवान बनाती है।
1: एक अच्छी कविता जब गीत बनती है तो वो किताब के पन्ने से निकलकर लाखों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। एक ऐसे ही कवि हुए गोपाल दास नीरज, जिन्हें गीतों का राजकुमार कहा जाता था। नीरज के गीतों में ललित काव्य दृष्टिगोचर होता है। नीरज के गीतों में कविता थी, दर्शन था, प्रेम था और जिंदगी को देखने का एक बेहद खूबसूरत अंदाज। फिल्म मेरा नाम जोकर हो या फिर हो प्रेम पुजारी, उनके गाने कालजयी होते हैं। उनके गीत जब हम गुनगुनाते हैं तो हमारे जीवन से जुड़ते हैं। आइए सुने प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत।

0: नीरज का ही लिखा ये गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसने न जाने कितने लोगों को जीवन की क्षण भंगुरता पर सोचने के लिए विवश किया।
1: स्वप्न झरे फूल से।

गीतकार नीरज ने सिद्ध कर दिया कि साहित्य और सिनेमा दो अलग अलग संसार नहीं हैं। हिंदी साहित्य में कुछ कवि ऐसे हैं जिनकी पंक्तियां किताबों से निकलकर जन जन की आवाज बन गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन उन्हीं में से एक थे। 1920 और 30 के दशक में हिंदी कविता के मंच पर बच्चन जी की आवाज ने एक अलग ही आकर्षण पैदा किया। उनकी काव्य पंक्तियों में दर्शन था, जीवन का उत्सव भी था और मनुष्य की पीड़ा भी।

की कृति मधुशाला ने उन्हें घर घर में लोकप्रिय बनाया। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला। लेकिन डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता सिर्फ मधुशाला तक नहीं ठहरी, उनकी कविता अग्निपथ ने संघर्ष और जीवन के प्रति अदम्य विश्वास जगाया। तू न थके गा कभी, तू न रुके गा कभी, तू न मुड़े गा कभी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। और दोस्तों देखिए कितना

0: सुंदर संयोग है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की यही कविता हिंदी सिनेमा तक पहुंची और फिल्म अग्निपथ के साथ एक नई पीढ़ी की जबान पर चढ़ गई। इस फिल्म में उनके सुपुत्र अमिताभ बच्चन ने मुख्य भूमिका निभाई। यही तो हिंदी की ताकत है, कविता किताब से निकलती है, गीत बनती है, सिनेमा तक पहुंचती है और फिर लोगों के दिलों में बस जाती है। दोस्तों, विविध भारती के संग्रहालय में कुछ ऐसे अनमोल मोती हैं जिन्हें हम आप तक आज पहुंचा रहे हैं। आइए सुनते हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविता उन्हीं के स्वर में।
1: आंगन

इस कार्यक्रम में अब जरा चर्चा कर ले ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। आपको जानकारी दे दें, सन 1968 में सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया, 1972 में रामधारी सिंह दिनकर, 1978 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को मिला ज्ञानपीठ, 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1992 में नरेश मेहता को,

0: 1999 निर्मल वर्मा, 2005 में कुंवर नारायण को मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2009 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को। 2013 में मिला केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार। 2017 में कृष्णा सोबती को। 2024 में मिला विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी भाषा हमें किताबों से किस तरह जोड़ती है, इन दिनों कौन कौन सी किताबें पढ़ी जा रही हैं, बता रहे हैं एक विलक्षण कथाकार मनोज रूपड़ा।
1: पच्चीस साल का वक्फा तो काफी लंबा है, बहुत सारे लोग इसमें हो सकते हैं। अगर मैं ये करूं कि भाई मेरी अपनी जो पसंद है या जो मैंने बहुत मन से को बहुत गहराई से जिन किताबों को पसंद किया, तो उसमें मंजूर एहतसाम की किताब है बशारत मंजिल, काशीनाथ सिंह का उपन्यास है काशी का 80, फिर रणेंद्र का उपन्यास है ग्लोबल गांव के देवता, और शिवमूर्ति का तो अभी हाल ही में आया है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन 25 सालों के, क्योंकि वो एक क्लासिकल उपन्यास है वो।
0: जी जी बिल्कुल।
1: और मैं अब उन उपन्यासों का जिक्र कर रहा हूँ जो समकालीन होते हुए भी क्लासिकल दर्जा पा चुके हैं। तो शिवमूर्ति का उपन्यास है गंभ है दरियाओं, और नासिरा शर्मा का एक उपन्यास है पारिजात। तो ये पांच उपन्यास पसंद के जो मैंने जिक्र किया, और उसके अलावा क्योंकि मेरा अध्ययन जो है ना अनुवादों पर भी बहुत ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, तो पांच ऐसी किताबें जो सबको पढ़नी चाहिए, उसमें हंगरी की एक लेखिका है मागदो साबा, उसका उपन्यास है दरवाजा। नॉर्वेजियन राइटर है थारियो वेसास, बहुत प्यारे लेखक हैं, और उसका बहुत खूबसूरत अनुवाद तेजी ग्रोवर ने किया है। उपन्यास का शीर्षक है परिंदे। समरसेट मॉम का उपन्यास है चांद और छह आने, ये कला की दुनिया के बहुत अलग तरह के जो कश्मकश होती है उसका उपन्यास है ये। फिर उसके बाद मार्गो वर्सेस लोसा का उपन्यास है किस्सा वो, और हमारे जो सबसे बड़े इन 25 सालों के बीच के जो अंतराल के जो मास्टर हैं गैब्रियल गार्सिया मार्केस, उनका उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष। ये तो सबको पढ़ने चाहिए, मैं भी ये रिकमेंड करूंगा, इन उपन्यासों को पढ़कर कई तरह के मतलब परिप्रेक्ष्य खुलते हैं।
0: आपने एकांत के 100 वर्ष का जो जिक्र किया मार्केस, तो इसका अनुवाद उमा शर्मा जी ने किया, बहुत ही बेहतरीन किताब है। एक किताब और आपको याद दिला रही हूँ मैं, काला बछड़ा सफेद बर्फ,
1: हाल ही में अनुवादित हुआ है, पढ़ा है मैंने वो भी, मतलब अगर इन 25 सालों में उसको हम रखें तो वाकई वो एक क्लासिकल उपन्यास है। हमारे यहाँ इस तरह की राइटिंग है नहीं, हमारे यहाँ अंदरूनी जो संश्लिष्ट यथार्थ है उसकी जो बारीक परतें हैं उसको खोलने का हुनर अभी तक हमारे लेखक में नहीं है। इसलिए हिंदी के लेखक को खासतौर से वो उपन्यास पढ़ना चाहिए कि अंदरूनी जो परतें होती है यथार्थ की उसको कितनी महीनता से कितनी बारीकी से एक लेखक खोलता है, ये अगर जानना है तो ये उपन्यास पढ़ना चाहिए काला बछड़ा, और इसका अनुवाद भी बहुत खूबसूरत हुआ है। मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि एक लेखक का काम सिर्फ लिखना नहीं होता, एक लेखक का काम रचनात्मक माहौल बनाना भी होता है। अगर हम अपना लेखन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अपने बाद के लेखकों के लिए कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो हमारा रचना कर्म भी अधूरा है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये मैंने सीखा है, मेरे से जो सीनियर थे मंजूर एहतसाम, सत्येन कुमार थे, कमला प्रसाद जी थे, इन लोगों ने हमेशा युवा लेखकों को जिनको कुछ भी नहीं आता था, जैसे मैंने लिखना शुरू किया था एक वर्कशॉप में शुरू किया मैंने, वो वर्कशॉप यानी कहानी का एक छोटा सा मतलब एक प्रशिक्षण। अब आप सोचेंगे कि भाई लेखन का भी कोई प्रशिक्षण शिविर होता है, हाँ मैंने प्रशिक्षण शिविर में कहानी लिखना सीखी है, वो युवाओं के लिए था जिन्होंने एक कहानी भी नहीं लिखी थी, पहली कहानी उसमें लिखी गई उस प्रशिक्षण शिविर में। तो हमारे यहाँ परंपरा है मतलब युवा लेखन को प्लेटफॉर्म देने की, ये कोशिश होती रहनी चाहिए।
0: अभी आप सुन रहे थे जाने माने कथाकार मनोज रूपड़ा के विचार। दोस्तों, किताबों से नाता जोड़कर हम समाज से जुड़ते हैं, हम संवेदनशील होते हैं, कल्पनाशीलता का विस्तार होता है। इन दिनों कौन कौन सी जरूरी किताबें आई जिन्हें पढ़ना चाहिए, बता रहे हैं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने साहित्यकार कैलाश वानखेड़े। आइए सुनते हैं कैलाश वानखेड़े के विचार।
2: ये एक बेहद मुश्किल सवाल है कि एक किताब का नाम बताया जाए और भारत में जिस तरह से जटिलता है और जो सामाजिक परिवेश है, मुझे लगता है कि पाठकों ने ओम प्रकाश वाल्मीकि की झूठन नाम

0: की जो आत्मकथा है वो जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कि भारतीय समाज की जो अंतर्निहित व्यवस्था है और जिसमें जो प्रताड़ना और उपेक्षा के साथ साथ एक संघर्ष का हिस्सा है वो इस किताब में है। और मुझे लगता है कि हर पाठक को भारतीय समाज को समग्र रूप से समझने के लिए जरूरी है कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जरूर पढ़े। उसी तरह से तुलसीराम की मुर्दहिया भी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जो कि हमारे परंपरागत समझ और जो हमें विरासत में मानसिकता मिलती है उसकी जड़ता के प्रहार करने के लिए और समग्र समाज को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब को भी जरूर पढ़ें। एक भारतीय समाज के उस रूप को और व्यवस्था को उजागर करती है जिससे कि अमूमन सामान्य पाठक अछूता रहता है। इन किताबों को इस लिहाज से पढ़ा जाना चाहिए कि समग्र भारत, समग्र समाज किस तरह से है और उसकी क्या क्या दिक्कतें, परेशानी, संघर्ष और सपने क्या क्या है। सारे पाठकों को हिंदी की किताबें जरूर पढ़ना चाहिए, जो उसकी पसंद सुविधा हो उस दिशा में उन्होंने अपना एक कदम बढ़ाना चाहिए। अपनी पसंदीदा किताब इसी तरह से बनती जाएगी, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, किताबों के संसार में दाखिल होते जाएंगे तो नई नई किताबों का भी उन्हें दर्शन होगा और वो इन किताबों को देख सकेंगे, पढ़ सकेंगे और अपने मानस को समझने के लिए, अपने दृष्टिकोण को व्यापक, उदार और समतामूलक बनाने के लिए वो इस दिशा में जरूर एक प्रभावी कदम उठा सकेंगे। कुछ मराठी साहित्यकार है जिनको कि बचपन के समय में पढ़ा था, वामन निंबाळकर हो, नामदेव ठसाल हो, मनोहर वाकोड़े हो, या फिर अगर मैं बात करूं दया पवार की, इन लोगों को बचपन और किशोरावस्था में पढ़ा था। बाद में प्रेमचंद से जो है कहना चाहिए कि एक अच्छी मुलाकात हुई, जिनके की समग्र साहित्य को पढ़ा गया, राजेंद्र यादव को पढ़ा। तरह के लेखक रहे हैं जिन्होंने मेरे अपने लिखने और समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हर व्यक्ति को जो है किताब जरूर पढ़नी चाहिए, अपने साथ अपनी यात्रा में किताबों का साथ रहना चाहिए। जब भी मौका मिला वो किताबों के पन्ने उलटे और उसको पढ़ने में अपना वक्त दे। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती है, उससे दोस्ती जो करेगा वो आदमी, वो इंसान जिंदगी भर व्यस्त रहेगा, खुश रहेगा, यही मुझे लगता है।
1: आप सुन रहे थे भारतीय प्रशासनिक अधिकारी और जाने माने कथाकार कैलाश वानखेड़े के विचार। अब एक ऐसे साहित्यकार के विचार जिन्होंने कहानियां भी लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं, संस्मरण भी लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत भी लिखा है और अनुवाद भी किया है। ये हैं उर्मिला शिरीष।
2: हिंदी साहित्य में कहानी कहने के नए माध्यम आ गए हैं। मुझे लगता है कि बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आज जो भी पाठक हैं, श्रोता हैं, वो इस तरह के साहित्य की तरफ उन्मुख हो रहे हैं जिसका कट सीधे सीधे भाषा के माध्यम से उनके दिल दिमाग में उतर जाए। क्योंकि मुझे लगता है कि जितना कसाव होगा कथ्य में और भाषा जितनी रोचक होगी, संप्रेषणीय होगी, उतने ही अच्छे ढंग से किसी भी कहानी को आत्मसात किया जा सकता है। बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाकर और कहानी को यदि हम कहते हैं तो जो मूल कहानी का भाव है वो कहीं ना कहीं बाधित होता है। और मुझे लगता है कि आज के इस बदलाव के समय में जब मीडिया और सोशल मीडिया चारों तरफ हमारे है और हम उन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें कथ्य के कसाव पर, कथ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए और भाषा पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए, जो भाषा सीधे सीधे हमारे श्रोताओं को और हमारे पाठकों को हमारी रचना का जो मूल भाव है, जो केंद्रीय भाव है, हम कहानी में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो रोचकता के साथ उनके अंतरतम में पहुंच सके। दूसरी बात ये कि साहित्यकार, मीडिया और नई पीढ़ी, ये बिल्कुल सही बात है कि तीनों आज बराबर से साहित्य जगत में अपने अपने स्तर पर सक्रिय हैं और इन लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी कहानी या कविता जब हम लिखते हैं तो यदि वो श्रोताओं या दर्शकों तक नहीं जाती है तो उसका कोई मायने नहीं रहता है। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि हमें अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह कर

0: देखते हुए जो आधुनिक नए माध्यम आए हैं उनको भी अपनाना जरूरी है। तो दोनों परंपरा और आधुनिकता नए माध्यमों के बीच इस तरह का तालमेल बैठाकर हम चल सकते हैं कि उसकी भाषा और शैली अक्षुण रहे और हमें ये लगे कि हम स्तंभ में जो हमारी कहानी की परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आधुनिक माध्यमों के रूप में भी हम कहानी को सुन रहे हैं। जैसे मैंने अनुभव किया है कि प्रेमचंद की कहानियाँ आज भी उतनी ही अच्छे ढंग से नए माध्यमों के द्वारा सुनी जाती हैं, पढ़ी जाती हैं। तो आधुनिकता का और परंपरा का दोनों का समन्वय मैं मानती हूँ कि होना चाहिए।
1: तो ये थे जानी मानी कथाकार उर्मिला शिरीष के विचार। दोस्तों, हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि रहे जिन्होंने कविता के क्षेत्र में प्रतिष्ठा पाने के साथ साथ हिंदी सिनेमा को भी यादगार गीत दिए। कुछ कवि और गीतकारों का जिक्र हमने पहले किया। एक जाना माना नाम है कवि और गीतकार शैलेंद्र, प्रगतिशील कवि और गीतकार जिन्होंने गीत लिखा आवारा हूँ, जीना यहाँ मरना यहाँ, सजन रे झूठ मत बोलो।

शकील बदायूनी, नक्श लालपुरी शायरी के साथ साथ फिल्मी गीतों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कवि प्रदीप का नाम भला हम कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने कवि के रूप में प्रसिद्धि पाई और बाद के दिनों में उन्होंने ललित गीत लिखे।

0: लीजिए अब सुनिए उनकी बात, जो पेशे से प्रोफेसर हैं, सुधी पाठक हैं और हैं रेडियो प्रेमी विनीत कुमार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आकाशवाणी, शुक्रिया ममता जी। पिछले 15-20 साल में जो किताबें जो मुझ पर बहुत असर कर पाई, उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा तुलसीराम जी की मुद्दैया और मणिकर्णिका, ये दोनों किताबें उनकी आत्मकथा है। और एक तो ये जीवन संघर्ष और जीवटता की किताब है। इसके बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जो तुलसीराम जी के बचपन के जीवन संघर्षों को बताती है। छात्रों को ये किताब हर हाल में, या फिर युवाओं को जो संघर्ष कर रहे हैं करियर बनाने की, छोटे शहरों से आकर बड़े शहरों में जद्दोजहद करें, उन्हें ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे बहुत एक हौसला उनका बढ़ता है, मिलता है। और तुलसीराम ने उत्तर प्रदेश के जिस छोटे से गांव से अपना सफर शुरू किया और बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तक हुए, लेखक हुए, पूरी किताब की यात्रा से जब गुजरेंगे हमारे युवा और युवा पीढ़ी के लोग, बहुत हिम्मत मिलेगी। दूसरी किताब आई दाता पीर, और पटना की पूरी पृष्ठभूमि पर लिखी हुई सुलभ का ये उपन्यास है। ये किताब इसलिए भी पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि इसमें जो भाषा की मिलावट और घुलावट है, आमतौर पर हम भाषा में मिलावट शब्द को बड़े ही निगेटिव, बहुत नकारात्मक ढंग से देखते हैं, कितनी अलग अलग खित्ते की भाषा बड़ी ही खूबसूरती के साथ आती है। और ये किताब इसलिए पढ़ी जानी चाहिए क्योंकि गलत और सही की बहस से अलग कैसे अलग अलग जनपद की भाषा, उसकी बुनावट एक मुकम्मल, एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमारे ऊपर असर करती है। तो ये किताब मैं चाहूंगा दाता पीर लोग पढ़ें, और मुझ पर असर करती है ये किताब बहुत गहरे जाकर। चौथी किताब रेडियो कोसी, उसी मित्र ने लिखी है, पेशे से पत्रकार। रेडियो कोसी के बहाने एक मार्मिक कथा बिहार की तो लिखते हैं, लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया और न्यू मीडिया के जो थोड़े उजास पक्ष हो सकते हैं, जो उजले उसके रूप हो सकते हैं, और उससे कैसे जिंदगी बेहतर हो सकती है, एक तरफ वो कहानी बताती है और दूसरी तरफ इसके जो स्याह पक्ष है उसकी कहानी बताती है। तो नए लोगों को ये किताब बहुत पसंद आएगी और पढ़ी जानी चाहिए। कविता में ईश्वर और बाजार मैंने काव्य संग्रह जयंतिता क्रिकेटा की पढ़ी है, और जो तार्किक समझ होती है जल जंगल जमीन के बीच की, हमारी जो जिंदगी है उसे किस तरह से बचाया जाना चाहिए, उसके क्या तर्क हो सकते हैं, और कैसे वो हमारे पैदा होने के साथ ही सवालों के साथ ये चीजें जुड़ती है, इसके लिए ईश्वर और बाजार किताब मुझे बहुत पसंद आई। एक आखिरी किताब की मैं चर्चा करना चाहूंगा, तुम चुप क्यों रहे केदार। ये हृदयेश जोशी हैं जो पेशे से पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकार रहे हैं, और हृदयेश जोशी ने 2013 में जो उत्तराखंड में भारी तबाही हुई, साइक्लोन जाने गई, उस दौरान वो कवर करते रहे, और तब से लेकर कई सालों तक बार बार फॉलो अप करते रहे, देखते रहे उस घटना के बाद की जिंदगी को। तो उस सिरे से इस किताब को पढ़ने की जरूरत है, तुम चुप क्यों रहे केदार। और यहाँ केदार एकदम बिल्कुल मानवीकृत रूप में हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और लगता है कि जितनी जिंदगी हमें कितनी कीमती लगती है, उतनी जिंदगी पहाड़ की भी, जंगल की भी, खेतों की भी, नदियों की भी है, और होनी ही चाहिए।
0: जी क्या बात है, बहुत अच्छा लगा इतनी सारी किताबों का आपने जिक्र किया। यहाँ पर दो किताबें हम भी अपनी ओर से जोड़ दें, एक तो ऋषिकेश सुलभ जी की दाता पीर का आपने जिक्र किया, तो

0: उन्हीं की किताब झूठी गली उन्हीं का उपन्यास है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें कैलाश वानखेड़ी की किताब उजला अंधेरा, ये किताब भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप खुद एक युवा हैं, तो आप युवाओं और आपसे बाद की जो पीढ़ी आ रही है उनके लिए हिंदी पखवाड़े पर, हिंदी दिवस पर क्या संदेश देंगे, कैसे आप हिंदी से जोड़ना चाहेंगे उन युवाओं को जो पढ़ने से, किताबों से कहीं दूर जा रहे हैं?
1: ममता जी, मैं जिस पेशे से जुड़ा हुआ हूँ, टेलीविजन, रेडियो और क्लासरूम के बीच जो मेरी दुनिया है, मैं उनको यही संदेश देना चाहूंगा कि चाहे किसी भी रूप में आपको मीडिया और अभिव्यक्ति दिखाई देती है, लेखन और भाषा के बिना कुछ भी नहीं है। आपके पास भाषा नहीं होगी तो आप दुनिया की तमाम चमकीली चीजों को ऊपरी ऊपरी तौर पर समझ पाएंगे, उसके अंदरूनी दुनिया को आप कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हिंदी की जो पूरी बनने की यात्रा रही है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही संघर्ष है इसमें। मैं चाहूंगा कि रील्स, वीडियो और नए माध्यमों की चमक के बीच इसे खोने मत दें, वापस मुड़कर पुस्तकालय की तरफ जाएं, किताबों की तरफ जाएं। लेखक पत्रकारों की लिखी दुनिया भर की चीजें हैं, आप एक बार जरूर देखें, जरूर उससे गुजरें।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया बातें आपने बोली हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत जी। आप सुन रहे थे प्रोफेसर और सुधी पाठक, रेडियो प्रेमी विनीत कुमार के विचार, हिंदी साहित्य कल और आज। आप सुन रहे थे ये विशेष रूपक। आज के विविधा कार्यक्रम में जिन साहित्यकारों को हमने शामिल किया उनके नाम हैं प्रियमवद, यतीन्द्र मिश्र, मनोज रूपड़ा, कैलाश वानखेड़े, उर्मिला शिरीष और विनीत कुमार। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का। संपादन सहयोग मनीषा सिंह। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। तो अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

तन्हा दिल एल्बम से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान की आवाज में, राम संपत का म्यूजिक। प्रोग्राम में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।

0: उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत दाग द फायर फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा।
1: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
2: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
1: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: रही हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम यादों की महफिल।

सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, चंदा की डोली एल्बम का नाम। नुसरत बद्र ने इसे लिखा, संगीत सोनू निगम का।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे मेरी चुनर उड़ उड़ जाए एल्बम से। ललित सेन ने इसे लिखा और उन्हीं का संगीत था। और इससे पहले जो आपने गीत सुना दीवाना एल्बम से, सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर ने उसे लिखा और साजिद वाजिद का संगीत था।

नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं आपके साथ अनुराधा उपाध्याय। आज इस सफर में, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम एक इबारत या टेक्स्ट हमारे फेसबुक पेज पर पोस्ट करते हैं जिसमें छुपे होते हैं कुछ शब्द जो आपको पहचानने हैं और बताना है कि उन शब्दों से कौन से गीत आज के इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तो वो इबारत हमने पोस्ट कर दी थी और देखते हैं कि आपने कौन कौन से शब्द चुने हैं, कौन कौन से गीतों की लिस्ट बनाकर भेजी है वहां पर, और हमारी लिस्ट से आज वो कितनी मिलती जुलती है। अगर वो फहरिस्त हमारी लिस्ट से ना भी मिले तो भी आप अपने पसंद के गीत उन शब्दों से चुनकर लेकिन वहां लिख सकते हैं। हो सकता है हम उन्हें आज के इस प्रोग्राम में शामिल कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस प्रोग्राम की, लेकिन उससे पहले ये इबारत एक बार फिर से पढ़ देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने इस इबारत को अभी तक नहीं पढ़ा है। इबारत कुछ इस तरह से है। वो दोनों पहली बार एक सफर में मिले थे। मुलाकात छोटी थी लेकिन उसके जाने के बाद भी उसका चेहरा बार बार याद आता रहा। उसे खुद समझ नहीं आया कि जाने कैसे और कब एक अजनबी से दिल का इकरार हो गया। फिर मुलाकातें होने लगी। दोनों अक्सर हंसकर कहते, जब हम दूर होंगे ना तो ये गीत याद रखना। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। कभी उसे लगता वो उसकी जिंदगी का वो मीत है जिसका इंतजार शायद बरसों से था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन उसे शहर छोड़कर जाना पड़ा। बहुत कुछ कहना था लेकिन शब्द कम पड़ गए। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, कुछ खूबसूरत पल देकर चले जाते हैं और हम बस तड़प कर उनका नाम ही ले पाते हैं। लेकिन उस प्यार की खूबसूरती यही थी कि उसे किसी जवाब की जरूरत नहीं थी। फिर खिड़की से आती हवा को महसूस करते हुए उसने खुद से कहा, आने वाला पल जाने वाला है तो जो पल मिला है उसे खोने का अफसोस क्यों। तो ये थी इबारत। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और मुझे इंतजार है आपके संदेशों का।

लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे खानदान फिल्म से, खयाम का संगीत था। इस गीत को लिखा था नक्श लालपुरी ने। और अब संदेशों की बारी आती है। आपने बहुत से संदेश हम तक पहुंचा दिए हैं। हमारी श्रोता लिखते हैं कि कभी कभी जिंदगी के सफर में कोई अजनबी यूं मिलता है कि छोटी सी मुलाकात भी दिल पर उम्र भर की छाप छोड़ जाती है। उनसे कहना बहुत कुछ होता है लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं, और ऐसा ही एहसास आज की इबारत में उनको पढ़ने को मिलता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ एहसास के साथ सजी है आज की इबारत। एक और श्रोता लिखते हैं कि छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, ये गीत उन्हें लगता है कि इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए। देखते हैं लिस्ट में आता है ये गीत या नहीं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज महफिल में अजनबी की मुलाकात और उसके बाद की संगीत में जुगलबंदी सुनने का बढ़िया आनंद मिलेगा, और इसे आनंद कहना भी अतिशयोक्ति होगी। फिलहाल वो इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जिस खूबसूरत अनुभूति से लिखा गया है, प्रेम की यात्रा और स्मृति सौंदर्य का ये सुंदर रूपक है जिसमें राग भी शामिल होंगे, और प्रेम आत्मा का एक सुंदर ठहराव है जो जिंदगी के सफर में राह में मिले किसी अजनबी को आपकी जिंदगी का हमसफर बना देता है। वो चेहरा बार बार याद आने लगता है तो समझिए कि प्रेम का अंकुर फूट चुका है। इकरार होते ही मुलाकातों का सिलसिला प्रेम को परवान चढ़ाते हुए मंजिल की ओर हम सफर बनकर हमदम हो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें तारीखों में नहीं मिलती, बस दिल की किसी खामोश तह में ठहर जाती है। वो भी एक सफर था, कुछ पल साथ चले फिर रास्ते अपने अपने हो गए। जी हाँ ऐसा भी होता है।

मुलाकात मुलाकातें नहीं बन पाती और बस एक मुलाकात बन जाती है, लेकिन वो जो एक मुलाकात होती है वो बड़ी सारी मुलाकातों पर भारी पड़ जाती है, जिंदगी भर ताउम्र याद रहती है। बिल्कुल हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि वो हमसफर था या मेरी कोई खूबसूरत दुआ, जो मिला तो लगा जिंदगी मिल गई और बिछड़ा तो जाना कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ एहसास बन जाते हैं। जी हाँ, बहुत खूबसूरत लिखा है आपने। और चलिए, जब मुलाकात की बात हुई और इस तरह से सुंदर संदेश आए, क्यों ना आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे संदेश लिखे जाएं जहां एक ही मुलाकात काफी है जिंदगी भर याद रखने के लिए। वो मुलाकात जरूरी नहीं कि प्रेमी के संग हो या फिर कुछ रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन वो मुलाकात किसी के साथ भी हो सकती है, एक ऐसी मुलाकात जिसने आपकी जिंदगी बदल दी और फिर वो मुलाकात या उनसे मिलना दोबारा नहीं हुआ। इस तरह का कुछ अनुभव आप लिख भेजें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे पढ़ने में, और हमारे साथी श्रोताओं को भी सुनने का मौका मिलेगा। फिलहाल ये अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं

0: प्रेम पुजारी फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल और एसडी बर्मन की तर्ज।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
1: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे प्रोग्राम सुरीला सफर। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के लंबे और अनजाने सफर में कई राहगीर मिलते हैं, पर कुछ अजनबी दिल पर अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं। और कभी किसी शांत मोड़ या सफर में जल्दबाजी में भी हुआ अगर छोटा सा संवाद होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को रूह को सुकून पहुंचाता है। फिर वो इंसान दोबारा मिले या ना मिले, लेकिन वो जो प्यार की गर्माहट है वो कहीं ना कहीं रह जाती है। जी हाँ बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि एक छोटी सी मुलाकात उन्हें याद आती है, उसका चेहरा आज तक याद आता है, बार बार याद आता है। और इस इबारत से मुलाकात शब्द पर ये जो पहला गीत हमने सुनवाया वो ही उन्होंने गेस किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि दो अजनबियों का आपस में टकराना, ये छोटी सी मुलाकात यादों में बस जाना, धीरे धीरे मुलाकात बढ़ती गई और लगा यही पल सबसे अनमोल है। इस रंग बिरंगी जिंदगी में मिलन के कुछ दिन जो आते हैं लेकिन फिर बिछड़ना

होता है, लेकिन वो सुनहरे पल हमेशा यादों में बस जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि इबारत जो है प्यार के उस सबसे पावन और परिपक्व रूप को दर्शाती है, जहां पा लेने से ज्यादा महत्व है महसूस कर लेने का। और इस कहानी में मिलना, बिछड़ना और फिर तड़प तो है ही, लेकिन आखिर में कोई शिकायत नहीं है। ये इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्यार जवाब या हक नहीं मांगता है, वो सिर्फ मौजूदगी का एहसास मांगता है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसे, बहुत ही सुंदर मैसेज आपने हम तक पहुंचाया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि वक्त अपनी रफ्तार से चला जा रहा है, वो उसके प्यार के रंग में कुछ यूं रंग गया कि हर मौसम में उसे उसी की छवि दिखाई देने लगी। ये इबारत से उन्होंने पंक्ति उठाई है और कहा है कि इस इबारत में ये जो रंग शब्द है, इससे हमने ये रंगीला रे गीत जो है अभी आपको सुनवाया। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही समझा और सही लिखा है। और आपके जो अनुभव उस पहली मुलाकात, या यूं कहिए कि एक मुलाकात के, वो किसी से भी हो सकते हैं जिसने आपकी जिंदगी को बदल दिया हो, आपको बदल दिया हो, आपके सोचने के नजरिए को बदल दिया हो। इस तरह के संदेश आप मुझ तक पहुंचाएं। हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ, दूसरे यानी कि अगले गीत की तरफ इस प्रोग्राम के।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में गीत शक्ति फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, आर डी बर्मन की तर्ज। और मुलाकात जिसने बदल दिया हो या जो याद रह जाए, उसमें एक संदेश आया है हमारे श्रोता का। लिखते हैं कि कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, वो सिंगापुर गए थे और वहां 3 साल की मासूम जापानी बच्ची साशा से मुलाकात हो गई थी, जिसने उस सफर में अपनी बाल लीलाओं से दिल लुभा दिया था। और अब तो साशा काफी बड़ी हो गई होगी, 20-25 साल की युवती हो गई होगी, लेकिन हमारे पास सिर्फ उसकी सुंदर तस्वीर और यादें ही रह गई है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर संदेश। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब वे स्कूल में थे तो एक लड़की जिसका न्यू एडमिशन हुआ था, वो एक सप्ताह तक स्कूल आई लेकिन फिर उसको स्कूल में नहीं देखा। शायद वो लोग दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हों और उस समय तो नंबर्स भी एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। एक सप्ताह में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी, आज तक उन्हें वो बात याद है। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि कुछ लोग जरा देर से खुलते हैं तो पहली मुलाकात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, लेकिन वो अगली मुलाकात आनी भी तो चाहिए। अगले हमारे श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि पहले सफर में किसी अजनबी से मुलाकात का एहसास दिल में एक अनूठी हलचल, अनजाना सा अपनापन और एक खूबसूरत याद छोड़ जाता है। बिल्कुल। एक और श्रोता का लिखना है कि परिपक्व प्रेम मुलाकातों का मोहताज नहीं होता, अदृश्य रहकर भी समर्पित प्रेम किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत ही सुंदर भाव। हमारी एक और श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि सभी को यथा योग्य सप्रेम अभिवादन करते हुए उन्होंने लिखा है कि आज जागो सुबह हो गई से जगे कुछ अपने ही पग में पगे, संगीतमय सुरों की सरिता में घुलकर भूले बिसरे गीतों की चांदी में नहाकर और हम है राही प्यार की आंधी में त्रिवेणी तट से सुबह कालीन चित्र लोग के साथ फिर आज के फनकार से मिलते हुए और गीतों के पिटारे को खोलते हुए साहित्य परिचर्चा यादों की महफिल से उबरते हुए अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम तक वो पहुंच चुकी हैं, वो शामिल हैं हमारे साथ। जी हाँ, हमारे सभी सुबह से जो प्रोग्राम आप सुन रहे हैं उनका एक सुंदर, कहते हैं एक सुंदर माला बना दी है आपने इन शब्दों को जोड़कर, उन शीर्षक को जोड़कर। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यार के लिए। फिलहाल हम ये गीत आप तक पहुंचाते हैं।

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे बेमिसाल फिल्म से। आनंद बख्शी ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात की जब बात चली है तो एक बहुत ही खास मुलाकात उन्हें याद आती है और वो अपनी शादी का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी जो शादी हुई है वो भी विविध

आरती के जरिए ही हुई है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, आपको सुनवाते हैं कि ये भी विविध भारती के फैन रहे हैं और इनकी जो अर्धांगिनी है वो भी विविध भारती की दीवानी थी और बस ऐसे ही धीरे धीरे विविध भारती से जुड़ाव होता रहा और नजदीकियां हुई और फिर शादी हो गई। आज हम साथ साथ हैं और साथ साथ में ही ये हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत अच्छा लगा ये मैसेज पढ़कर हमें। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कुछ मुलाकातें बस याद बनकर रह जाती है, आज लगता है उस धुंधली यादों से कोई चादर हटा दे और हम खो जाएं उन पुरानी मुलाकातों में। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि अहमदाबाद जाते हुए परिवार से ट्रेन में हुई, जो सामने की बर्थ पर जा रहे थे वहां उनसे मुलाकात हुई और वे सज्जन तो भद्र पुरुष थे ही, उनकी श्रीमती जी बड़ी हंसमुख और मिलनसार महिला थी और वो अकेले जा रहे थे, मैगजीन में डूबने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दोनों से इतने घुल मिल गए कि बात हुई बातों में घंटों का सफर कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। ऐसा होता है अक्सर। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकात तो सभी करते हैं लेकिन मुलाकातों में जीते भी हैं, लेकिन ये मुलाकातें कैसी हैं और उसके मूल्यांकन क्या हैं ये कितने सोच पाते हैं, किंतु ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ मुलाकातें याद बनकर हृदय में बस जाए तो उसका क्या ही कहना। सदियों से विभिन्न मुलाकातों के बीच ऐसी मुलाकात की तो प्रतीक्षा रहती है हमेशा। जी हाँ, एक और श्रोता लिखते हैं कि ट्रेन में सफर करते हुए एक लड़की और उनकी सहेलियों से मुलाकात हुई और अंताक्षरी वगैरह खेली और अभी उन्हें वो याद आती है, वो सुनहरी मुलाकात आज तक भुलाई नहीं भूलती है। हमारे एक और श्रोता है, उनका कहना कुछ अलग तरीके से है। वो कहते हैं कि सफर में न जाने कितने लोग साथ आते हैं, कितने साथ छोड़ देते हैं, कभी हिसाब नहीं रखा, क्योंकि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला, वो इसमें बिलीव करते हैं। कोई बात नहीं, सफर तो हमें करना ही है, कभी कोई साथ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं मिले तो हमें अकेले ही चलना है, लेकिन ये सफर जो है वो जरूर तय करना है। फिलहाल सुरीला सफर में आप मेरे साथ हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

0: अभिमान फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी ने से लिखा, एस डी बर्मन की तर्ज थी।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर के स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम याद, प्रोग्राम सुरीला सफर। यादों की बात चली है तो यादों की महफिल बोलने वाली थी, लेकिन सुरीला सफर इस वक्त आप सुन रहे हैं मेरे यानी अनुराधा के संग। आपके मैसेजेस मुझ तक पहुंच चुके हैं और एक श्रोता लिखते हैं कि ट्यूशन पढ़ते समय शिक्षक द्वारा मेरी गलतियों पर मुझे डांटते देखकर उसकी नजरें उठाना और फिर मुस्कुराना और फिर मुझसे नजरें मिलते ही नजरें झुकाकर बस मंद मंद मुस्काना, जाने कैसी बिजली सी कौंध गई थी दिल में और दिल रोशन हो गया था। संवाद का लेन देन तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सुनहरी यादें बनकर अब तक दिल में बसी हुई है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुलाकातों का मौसम आ गया है तो गाने तो बनते हैं। बिल्कुल, गाने हम आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन आप कौन से गीत का इंतजार कर रहे हैं ये जरूर लिख भेजिए। देखते हैं अब फेहरिस्त जो बाकी की बची है उसमें वो गीत आता है या नहीं। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो अजनबी था मगर कुछ जाना पहचाना सा लगा, जैसे कोई भूला हुआ ख्वाब अचानक सामने आ गया। मुलाकात तो बस चंद लम्हों की थी पर उसकी खामोशी देर तक मेरे साथ चलती रही। जी हाँ बिल्कुल, कुछ मुलाकातें एकदम खामोश रहती हैं, संवाद भी बहुत कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, लेकिन वो एक चेहरा, वो एहसास कभी नहीं भूल पाता। चलिए बढ़ते हैं अगले गीत की तरफ।

किशोर कुमार की आवाज में गीत धर्मात्मा फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। इंदिवर ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक ऐसी मुलाकात का जिक्र करना चाहूंगा जिसने मेरी सोच और शख्सियत को ही बदल दिया है। कुछ साल पहले अपने दोस्तों के साथ मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एलिफेंटा केव्स जाने के लिए बोट की कतार में खड़े थे और वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत ही मशहूर उद्योगपति अपने दोस्तों के साथ खड़े हैं और ठीक उनके पीछे खड़े हैं और इन्होंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप लाइन में खड़े होने के बजाय पहले बोट में बैठ जाइए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए मना किया और ये कहा कि मैं यहां एक आम नागरिक के तौर पर हूं और मैं लाइन में ही खड़े रहूंगा। ये कहीं जो बातें हैं कहीं ना कहीं उन्हें झकझोर के रख दिया और तब से उनकी सादगी के और भी ज्यादा फैन हो गए। जी हाँ, ये तो है कि सादगी तो हमें जरूर सीखनी चाहिए जहां से भी हमें सीखने को मिले और ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा हमें ऊंचाइयों तक लेकर जाती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि विविध

इस वक्त न जाने कितने सारे करोड़ों की तादाद में लोग सुन रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पेश हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा वो रिलेट कर पा रहे हैं गीतों से और बातों से। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि वो और उनके पति भी उन्हें रेडियो से ही मिले। सूरत FM पर उन्होंने ये गीत पसंद किया था और सामने जो बैंक में बैठे उनके पति हैं उन्होंने सुना था और बात भी पैसों पैसों की हुई थी, क्योंकि वो बैंक में काम करते हैं, और इस तरह से कहीं ना कहीं उनका मिलना हुआ, बातचीत हुई और आगे उनकी शादी हुई। बहुत अच्छा लगा कि रेडियो के मार्फत आप मिले। हम चलते हैं आगे इस प्रोग्राम में।

0: किशोर कुमार की आवाज में गीत गोलमाल फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे श्रोता लिखते हैं कि ये जो सुरीला सफर है इसमें गीत तो सुनने को मिलते ही अच्छे अच्छे, लेकिन साथ ही साथ हम संदेश भेजें या ना भेजें, लेकिन जो बाकी श्रोता लोग हैं उनके संदेश पढ़कर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव महसूस होता है और ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम अपने संदेश अगर यहां पर लिखें तो कहीं ना कहीं उनसे एक रिश्ता बन जाता है। जी हां, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे को श्रोता लिखते हैं कि मोहब्बत का अर्थ हमेशा साथ पाना नहीं, कभी कभी मिले हुए खूबसूरत पलों को मुस्कुराकर संजो लेना भी है, और ऐसा ही कुछ इबारत में एक छोटी सी मुलाकात के द्वारा बताया गया है। बिछड़ने की कसक तो है, लेकिन जाते जाते उन खूबसूरत याद जो है वो दिल में हमेशा जीवित रहनी चाहिए, ये भी बताया हुआ है। हमारी एक और श्रोता लिखती है कि जिंदगी के सफर में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो मंजिल नहीं बनते मगर सफर को यादगार बना जाते हैं। वक्त उन्हें दूर कर देता है लेकिन उनकी यादें दिल के किसी कोने में हमेशा महकती रहती है, और बस जब मन करता है हम उन्हें याद कर लेते हैं। ऐसे पलों को हमेशा याद करते रहना चाहिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि सफर के दौरान किसी अजनबी से सिर्फ एक मुलाकात होने के बाद कभी दोबारा मिलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो जो मुलाकात होती है वो बहुत से खूबसूरत पलों से जिंदगी को भर देती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

किशोर कुमार की आवाज में पड़ोसन फिल्म का ये छोटा सा गीत का छोटा सा हिस्सा हमने आपको सुनवाया। फिलहाल वक्त की कमी की वजह से हमें अलविदा कहना पड़ेगा। आपने आज का ये सफर, सुरीला सफर, तय किया अनुराधा के संग।

0: यह है विविध भारती, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है मन चाहे गीत। आपके फरमाइशी गीत जो आपने लिख भेजे हैं पत्रों के जरिए हम तक पहुंच चुके हैं और आज इस प्रोग्राम में मैं अनुराधा उपाध्याय सुनवाने वाली हूं आपके पसंदीदा गीत। और लीजिए शुरुआत करते हैं इस पहले गीत के साथ और उसके बाद हम नाम लेंगे उन श्रोताओं का जिन्होंने उसकी फरमाइश लिख भेजी है।

अमित कुमार की आवाज में गीत तेरी कसम फिल्म से अभी आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन का संगीत था। इस गीत को सुनना चाहा था संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, इशिका यादव ने। नेपाली पारा नाजिरगंज, हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक स्वीटी, उषा, ज्योति, किरण, दिशा, रितेश लिंबू और उनका परिवार। तेलंगाना से मोहम्मद बुरहाद्दीन और यूसुफुद्दीन ने। अब्दुल बाबा अंजाना ने भी इसे सुनना चाहा था। वाड़ी वडोदरा गुजरात से गिरीश बाम, वैशाली बाम, अजिंक्य और अक्षय ने इसे सुनना चाहा था। और इसी गीत को सुनना चाहा था बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉ डब्ल्यू अंसारी, डॉ सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती ने इसी गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। इस गीत में अनुरोध फिल्म का नाम आनंद बख्शी ने से लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, और इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी कोल सिटी बरका गाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी साहनी, मोहम्मद अफजाल इब्राहिमी, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी और गोविंद चुग ने, परसा टोला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीला और तुषारिणी, साथ ही साथ खुमेंद्र मसीहा ने इसे सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। फ्रेंड्स कॉलोनी बैंगलोर से आरिफ हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने, साथ ही पटवा हिम्मतलाल हरकचंद ने, वर्धमान नगर जैन सोसाइटी, बचाओ कच्छ भुत

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे इज्जत फिल्म से। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण ने। उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति और चेतन शामतकर ने। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डेनी पवार, मनीष पवार। गांव चलाना काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, इकबाल खलील और महबूब दल ने। पुराना तालाब डुमराव से वली अल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और बिटिया सोनम ने। इंदिरा विहार दिल्ली से डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी ने इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में गीत आप सुन रहे थे साजन बिना सुहागन फिल्म से, इंदिवर ने से लिखा, उषा खन्ना का संगीत। और इस गीत को सुनना चाहा था लाबरिया भेरू इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और उनका समस्त परिवार, कपाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक, वरोड़ा चंद्रपुर से लवकुश खाडिलकर, उमा देवी खाडिलकर, रोहित और प्रणीत ने, डबवाली हरियाणा से जेके बोकोलिया, सुनीता बोकोलिया, संजय, अनिल, मीनू ने, और अकोला महाराष्ट्र से इस गीत को सुनना चाहा था गजानन कुम्हार, पद्मावती कुम्हार, विशाल, ज्योति, मधुर और उनके परिवार ने।
1: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियां।
2: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
3: क्या बात है।
2: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
1: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास, वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण, वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
2: ट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
1: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मन चाहे गीत।

0: चलते चलते ये गीत पाकीज़ा फिल्म से हमने आपको सुनवाया और इस गीत को सुनना चाहा था गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और विशाल नेशा ने, पटेल नगर मलोट से डॉ रमेश कुमार झाझोरिया, गीता रानी गगनदीप और आरजू ने, रामनाहली बेंगलुरु से मोहम्मद आरिफ, अरफा फातिमा, एमएच शरीफ और आरिफ हुसैन ने, तालुका उमरखेंड ढांकी से राम गाड़ेकर, सुनीता गाड़ेकर और अभिजीत, साथ ही कोमल अभिषेक, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक और शोभा नायक, साथ ही उनका समस्त डागला परिवार इस गीत को सुनने की फरमाइश लिख भेजी थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम मन चाहे गीत यहीं संपन्न होता है।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग, श्रोताओ, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं नाटक साबुन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण है। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। तो आइए सुनते हैं नाटक साबुन की टिकिया।

0: घोटी, मेरी तो समझ में नहीं आता हम इस पार्क में क्यों चले आए।
1: क्यों, तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा फिलिप?
0: अच्छा लगने को यहाँ क्या है, क्या मैं जान सकता हूँ?
1: फिलिप, यहाँ कुछ नहीं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ।
0: अच्छा, मिस्टर नॉर्मन गॉड्स बाय, आप जरा उस बहुत कुछ पर रोशनी डालेंगे जिसे आपकी सूक्ष्म दृष्टि ने देखा है और ये नाचीज अपनी खुली आंखों से भी नहीं देख पाया।
1: देखो फिलिप, इस शहर में सभी लोग सुखी और सफल नहीं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो जीवन के संघर्ष में अभी तक असफल रहे हों और निराशा का मुंह देख रहे हैं, लेकिन वो अपनी निराशा और असफलता को दूसरों के सामने जाहिर नहीं करना चाहते। ऐसे लोग शाम के धुंधलके में यहाँ आकर बैठ जाते हैं ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके।
0: लेकिन गोटी, इसमें पार्क की खूबी कहाँ से आ गई?
1: देखो देखो देखो, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जिंदगी में थके हारे ये लोग अपने दुखी मन को थोड़ी सी शांति, थोड़ा सा आनंद देने के लिए यहाँ आ जाते। इस शांत वातावरण में, चंद्रमा की चांदनी में कुछ देर बैठकर उन्हें बहुत सुकून मिलता। वो अपना दर्द, अपनी परेशानी सब भूल जाते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो चेहरे पर उदासी की जगह ताजगी और निराशा की जगह आशा झलकने लगती है। अब बताओ फिलिप, क्या ये कम बड़ी बात?
0: वाकई वाकई बहुत बड़ी बात है। और गौड़ भाई साहब, अब मेरी समझ में आया कि आप आज यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं।
1: मैं?
0: हाँ, तुम। आज के दिन तुम्हारी मानसिक स्थिति भी किसी निराश और हारे हुए आदमी जैसी ही है।
1: कैसे?
0: तुम्हारी प्रेमिका ने अचानक तुमसे मुंह फेर लिया।

0: उधर उधर बिजनेस में भी थोड़ा घाटा हो गया। ऐसी निराशा में जैसा कि तुम्हारा कहना है, यहाँ आकर ही तुम्हें कुछ सुकून मिल सकता था, है ना?
1: नहीं नहीं नहीं दोस्त, ये बात नहीं है। रोजली ने मुझसे मुंह नहीं मोड़ा, बस थोड़ा सा नाराज हुई है, जो कि उसकी आदत है। दो दिन बाद गुस्सा थूक कर खुद ही मुझसे मिलने चली आएगी।
0: अच्छा, ऐसा?
1: हाँ, हमारी दोस्ती इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। अब रही बात बिजनेस की, तो तुम जानते ही हो कि बिजनेस में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते। आज घाटा हुआ तो कल मुनाफा हो सकता। सच मानो फिलिप, यहाँ आने की वजह मेरी निराशा कतई नहीं है। हाँ,
0: तो फिर कौन सी वजह तुम्हें आज यहाँ खींच लाई और तुम मुझे खींच लाए?
1: फिलिप, शायद मैंने तुमसे कभी जिक्र नहीं किया, मैं अक्सर इस पार्क में आता हूँ।
0: अच्छा?
1: यहाँ आते जाते लोगों के चेहरे पढ़ना मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अब तुम ही देखो, वो उस बेंच पर अभी अभी जो साहब आकर बैठे हैं ना, उनका चेहरा देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने मकान का किराया नहीं दिया और मकान मालकिन के डर से यहाँ चिपे बैठे हैं।
0: अच्छा, वो देखो, वो औरत जो उधर घास पर बैठी है, उसका चेहरा क्या बता रहा है?
1: साहब बता रहा है कि उसकी मैडम ने उससे महीने भर काम कराया, लेकिन तनख्वाह देते समय इधर उधर के नुकसान थोप कर सिर्फ 15 दिन के पैसे पकड़ा दिए। लेकिन तुम देखना, थोड़ी देर बाद ही इनके चेहरों के भाव बदल जाएंगे। किराएदार कल का पक्का वादा करके आत्मविश्वास के साथ अपने कमरे में जाएगा और वो औरत अपना दब्बूपन छोड़कर मालकिन से पूरी तनख्वाह वसूल करने का निश्चय लेकर घर जाएगी। हाँ, देखना।
0: तुम्हारी संवेदनशीलता की दाद देनी पड़ेगी यार। तुम्हें तो कोई लेखक या चित्रकार होना चाहिए था।
2: पता नहीं यार, तुम लोहे के धंधे में कैसे पड़ गए।
1: नहीं दोस्त, नहीं, बिजनेस से तो मुझे शुरू से ही लगाव रहा है, ये सब तो खाली वक्त के शगल है।
2: अरे गोटी, हाँ। भाई तुम्हारा शगल पूरा हो गया हो तो अब चलें यहाँ से।
1: हाँ चलो।
2: देखो भाई, मैंने तुम्हें इतना वक्त दिया है, अब चलकर मुझे कहीं कुछ बढ़िया सा खिलाओ ना।
1: नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, कल या किसी और दिन।
2: क्यों भाई, आज क्यों नहीं?
1: भाई मैं व्यापारी आदमी हूँ, आज बिजनेस में पहले ही नुकसान उठा चुका हूँ, अब और नुकसान नहीं करूँगा।
2: मान गया यार, तुम पक्के बिजनेसमैन हो। चलो, आज की दावत मेरी तरफ से रहेगी, चले।
1: हाँ चलो।
2: अरे हाँ यार, याद आया यार, मुझे तो 7 बजे डॉक्टर हैगर्ड के पास जाना है, वहाँ थोड़ी देर लग जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लोगे क्या?
1: नहीं नहीं नहीं फिलिप, नहीं, डॉक्टर के क्लिनिक में दूसरे मरीजों की शक्ल घूरते रहने से अच्छा है कि मैं यहीं बैठकर तुम्हारी राह देखूं।
2: ठीक है, मैं जल्दी ही वापस आता हूँ।
1: हाँ।
2: लेकिन ध्यान रहे, इस बीच अपना और नुकसान मत कर लेना। हाँ।

0: बेटा क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ?
1: जी जरूर जरूर बुजुर्गवार, बेंच में बहुत जगह है, आप आराम से बैठिए। आइए आइए।
0: आराम अब कहाँ, अब तो ऊपर जाकर ही आराम नसीब होगा।
1: पर जाने की उम्र से तो ये अभी बहुत दूर लगते हैं, फिर ऐसी निराशा की बातें क्यों कर रहे हैं? अच्छा ऐसा मत कहिए। अच्छा आप यहाँ रोज आते हैं?
0: और कहाँ जा सकता हूँ, किस तरह वक्त तो काट नहीं है।
1: लगता है आपके घर में कोई और सदस्य नहीं है, आप अकेले रहते हैं क्या?
0: हाँ ऐसा ही समझो, मेरी पत्नी पिछले साल निमोनिया से चल बसी। घर में दो शादीशुदा बेटे जरूर हैं, लेकिन किसी के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। मुझे घर में अकेला छोड़कर बेटे बहुएं सब बाहर चले जाते हैं।
1: अब कहाँ कहाँ चले जाते हैं?
0: अपनी अपनी नौकरी पर।

0: अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई निठल्ला नहीं बैठा रहता और इस तरह घर में कुछ पैसा भी आ जाता है, गृहस्थी और अच्छी तरह चलने लगती है।
1: लेकिन मैं तो अकेला रह जाता हूँ, रिटायर होने का ये मतलब तो नहीं कि मुझसे कोई बात करने वाला ना हो, कोई हंसने बोलने वाला ना हो। मैं किस चीज से अपना दिल बहलाऊं, सच मानो ये उपेक्षा मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या सहानुभूति दिखाने की बजाय तुम हंस रहे हो?
0: अरे क्या करूं बुजुर्गवार, आपने तो तिल का ताड़ बनाकर रख दिया, जरा सी बात को लेकर आप इतने उदास हैं? है?
1: ये जरा सी बात है, है? इस उम्र में इतना अकेलापन?
0: श्रीमान, इस अकेलेपन का इलाज भी आप ही के पास है, आजमा कर देखिए।
1: मैं समझा नहीं तुम कहना क्या चाहते हो।
0: श्रीमान, आप अपने आप को घर में बंद क्यों करते, बाहर निकलिए, अपने पुराने दोस्तों से मिलिए, अपनी उम्र के कुछ नए लोगों से जान पहचान बढ़ाइए, कोई ऐसा हल्का फुल्का काम शुरू कीजिए जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, फिर देखिए ना आपको वक्त का पता चलेगा ना ही अकेलेपन का एहसास होगा। क्यों, क्या सोचने लगे श्रीमान?
1: नौजवान, तुम्हारी बात में वजन है, इस पर अमल करके देखता हूँ कितनी कामयाबी मिलती है। अच्छा अब चलूंगा।
0: अरे ऐसी जल्दी क्या है, अभी तो आप आए हैं।
1: आज कुछ जल्दी है, ये थैला देख रहे हो ना?
0: हाँ,
1: यहाँ आते हुए बाजार से कुछ जरूरी चीजें खरीदी थी।
0: अच्छा अच्छा,
1: इन्हें घर पहुंचाना है। अच्छा भाई, फिर मिलेंगे।
0: हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, फिर मिलेंगे। फिलिप अभी तक नहीं आया, कह रहा था डॉक्टर की क्लिनिक से जल्दी ही लौटाऊंगा, इतनी देर हो गई लेकिन उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा। एक जगह बैठे बैठे पांव सोने लगे, जरा पार्क का एक चक्कर लगा कर आता हूँ।

0: देखिए मेरी बेंच पर अब ये कौन जनाब आकर विराजमान हो गए। लगता है इस बेंच में कोई खास बात है, तभी जिसे देखो आकर यहीं बैठ जाता। इस बार उन बुजुर्गवार की जगह एक खूबसूरत नौजवान ने ले ली, लेकिन इसके चेहरे पर उन साहब से ज्यादा उदासी छाई। अरे ये तो जैसे अपने आप से कुछ बोलता भी जा रहा है। सुनना चाहिए ये नौजवान क्या बड़बड़ा रहा है।
1: साइमन साहब, आप तो अपने आप को बहुत समझदार और होशियार समझते थे, आज देख लिया आप कितने होशियार हैं। आप जरा भी सावधान रहते तो ये नौबत नहीं आती। अब भुगतिए अपनी लापरवाही का नतीजा। और जैसा बुरा दिन तो
0: माफ करना जेंटलमैन, पूछ सकता हूँ आप किससे बातें कर रहे हैं?
1: और किससे करूंगा साहब, नील साइमन से, यानी अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर रहा बल्कि अपने आप को कोस रहा हूँ।
0: साइमन साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप जरूर किसी परेशानी में हैं।
1: जिस भंवर जाल में मैं फंसा हूँ, अगर आप फंस जाते तो मेरी ही तरह परेशान मिलते।
0: अच्छा,
1: समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा।
0: ओ, किसी ने आपको धोखा दिया है क्या?
1: अरे नहीं साहब, अपनी इस दुर्दशा के लिए और कोई दूसरा नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ। मैंने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर डाली, उसी का नतीजा भुगत रहा हूँ।
0: आखिर बात क्या हो गई, जरा मुझे बताएंगे?
1: अरे क्या बताऊँ, दरअसल बात यह हुई कि मैं आज दोपहर लंदन आ गया था।
0: अच्छा।
1: और चूंकि मैं यहाँ पहली बार आ रहा था, इसलिए मेरे दोस्त ने मुझे एक अच्छे होटल का पता दे दिया था।
0: हाँ, वो कौन सा होटल?
1: अब वो होटल क्या, हाँ, पेंटागोनियन होटल, वर्कशायर स्क्वायर।
0: पेंटागोनियन होटल, लेकिन वो होटल तो शायद अब नहीं रहा।
1: हाँ वही तो।

0: स्टेशन से टैक्सी लेकर मैं सीधा वर्कशायर स्क्वायर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि होटल को कुछ दिन पहले गिरा दिया गया और उसकी जगह वो सिनेमा घर बना रहा है। कुछ देर मैं यूं ही खड़ा उस इमारत को देखता रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि कहां जाऊं, कहां ठहरूं।
1: वहां तो आसपास कई अच्छे होटल हैं, आप कहीं भी चले जाते।
0: अब ये सब तो आप जानते हैं ना, अब मैं तो इस शहर में बिल्कुल अनजाना था। मैंने टैक्सी वाले से किसी अच्छे होटल में ले चलने को कहा तो वो मुझे आसपास नहीं बल्कि काफी दूर ले गया।
1: आपको जानबूझकर दूर ले गया ताकि टैक्सी का अच्छा भाड़ा बन जाए।
0: हो सकता है, लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए, पैसे की मुझे कोई कमी नहीं है, बल्कि मैंने टैक्सी ड्राइवर को अच्छी खासी टिप भी दी। वो इसलिए कि वो होटल बहुत अच्छा और आरामदायक था।
1: अच्छा अच्छा।
0: खैर, होटल पहुंचकर मैंने अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी और उन्हें अपना नया पता भी लिख दिया और फिर एक कप चाय पीकर मैं साबुन खरीदने बाहर बाजार की ओर निकल पड़ा।
1: साबुन खरीदने?
0: जी
1: साइमन साहब, मैं कुछ समझा नहीं।
0: वो आप समझेंगे भी कैसे, मैं आपको क्या बताऊं मिस्टर, वो सॉरी, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ?
1: हाँ, गोट्स भाई, नॉर्मन गोट्स भाई। वैसे आप मुझे गोटी कहकर बुला सकते हैं।
0: हाँ ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ तो मिस्टर गोटी, मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब भी कहीं बाहर जाता हूँ साबुन अपना ही इस्तेमाल करता हूँ। होटल का साबुन इस्तेमाल करना मुझे पसंद नहीं है।
1: अजीब आदत है।
0: हाँ है तो अजीब ही। वैसे शुरू से ही मैं अपना अलग साबुन रखता हूँ, इस बार मैं सामान में साबुन रखना भूल गया। खैर, मैंने होटल में एक प्याला चाय पी और साबुन खरीदने निकल पड़ा। साबुन खरीदा और घूमता फिरता दूर तक निकल गया। सोचा बाजार की रौनक ही देख लूं।
1: लगता है आपको हमारा शहर बहुत पसंद आ गया। वैसे लंदन बुरा शहर नहीं है, आपका क्या ख्याल?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, लंदन बड़ा ही अच्छा शहर है, लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी से यहाँ रहने का सारा मजा किरकिरा कर दिया।
1: वो कैसे?
0: अब वही बता रहा हूँ। अब देखिए, काफी दूर निकल जाने के बाद मैंने सोचा कि अब लौटना चाहिए। बस मैं वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं उस होटल का नाम ही भूल गया हूँ।
1: अरे
0: अब होटल का नाम ही नहीं, मैं उस सड़क उस एरिया का नाम भी नहीं जानता था जहाँ वो होटल था।
1: तो फिर आपने क्या किया?
0: क्या करता, कभी कभी एक सड़क पर चला जाता, कभी दूसरी तरफ निकल जाता, लेकिन ना तो वो होटल मिला और ना ही उसका नाम याद आया। और तब से मैं यूं ही भटक रहा हूँ। मिस्टर गोटी, जो आदमी लंदन पहली बार आया हो, जिसका यहाँ ना कोई दोस्त हो ना रिश्तेदार, उसकी परेशानी का आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं।
1: हाँ वाकई परेशानी की बात तो है साइमन साहब।
0: हाँ,
1: मैं क्या आपकी समस्या का कोई हल नहीं है?
0: समस्या का एक ही हल है, वो ये कि मैं अपने घर पर तार कर दूं और उनसे होटल का नाम पता भेजने को कहूं। लेकिन इसमें भी एक मुश्किल है।
1: वो कैसी मुश्किल?
0: अब देखिए, घर वालों को मैंने आज ही चिट्ठी भेजी है, उन्हें 2-3 दिन बाद चिट्ठी मिलेगी, तब तक मैं कहां रहूंगा, कहां जाऊंगा? सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है।
1: देखिए, इस तरह परेशान होने से क्या होगा, शांत रहिए और सोचिए कि इस उलझन से निकलने का अब क्या रास्ता हो सकता है। अरे हाँ हाँ साइमन साहब, एक रास्ता तो है।
0: क्या?
1: आप अपने घर तार भेजिए और कल परसों तक, जब तक उनका जवाब आता है, आप किसी दूसरे होटल में चले जाइए। आपके बटुए में फिलहाल इतने पैसे तो होंगे कि आप कोई सस्ता सा होटल।
0: मिस्टर गोटी, वही तो समस्या है, इस वक्त मेरी जेब बिल्कुल खाली है। दरअसल मैं 1 शिलिंग जेब में डालकर होटल से बाहर निकला था, जो मैंने साबुन में खर्च कर दिया। अब तो जेब में बस ये 2 पेंस पड़े हुए हैं। ये देखिए, काश मैं होटल से अपना बटुआ लेकर चलता।
1: कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये आदमी कपड़ों से, बोलचाल से संपन्न ही दिखाई देता है। बेचारा आज कैसी परेशानी में पड़ गया।
0: मिस्टर गोटी, आप क्या सोचने लगे?
1: जी वो
0: समझ गया। आप सोच रहे हैं कि मैंने अपने मन से किस्सा गढ़कर आपको सुनाया है। नहीं, इसमें आपका दोष नहीं, ये वाकया है ही इतना अजीब कि कोई आसानी से यकीन नहीं करेगा।
1: नहीं, साइमन साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो कहानी सुनाई है उसका एक एक शब्द सच हो सकता है। मेरे साथ एक बार बिल्कुल ऐसी ही घटना हो चुकी है। हाँ।
0: अच्छा?
1: हाँ, एक बार पेरिस में मैं भी कुछ ऐसी ही भूल कर बैठा था।
0: हो,
1: और मजेदार बात यह है कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था।
0: अच्छा?
1: हम दोनों ही भुलक्कड़ निकले। गनीमत थी कि हमें इतना याद रहा कि हमारा होटल नहर के किनारे, बस नहर के साथ साथ चलते रहे और किसी तरह होटल पहुंच ही गए।
0: चलिए, तब तो आपको मेरी बात पर पूरी तरह विश्वास हो गया। क्या है मिस्टर गोटी, के अगर मैं आपकी तरह विदेश में रास्ता भूल गया होता तो इतना घबराता नहीं, लेकिन अपने ही देश में मैं...
1: अरे ये आप क्या कह रहे हैं, पराए देश में तो आदमी और भी ज्यादा घबरा जाता है।
0: नहीं, हाँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब देखिए, अगर मैं विदेश में होता तो ऐसी स्थिति में अपने दूतावास से जरूर मदद ले सकता था।
1: हाँ,
0: लेकिन यहाँ तो मैं अपने ही देश में हूँ।
1: हाँ।
0: गोटी साहब, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त मैं अपने आप को कितना असहाय महसूस कर रहा हूँ।
1: साइमन साहब, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। क्या आपका होटल ढूंढने में मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ?
0: नहीं, इस तकलीफ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। मेरे साथ आप भी खामखा इधर से उधर भटकते रहेंगे। अब तो थेम्स के किनारे मैदान में रात गुजारने के सिवाय और कोई चारा नहीं। अब मिस्टर कोटी,
1: हाँ, कहिए।
0: हाँ, आप अगर मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो...
1: हाँ, बताइए, संकोच मत कीजिए, बताइए ना।
0: क्या मुझ पर विश्वास करके मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? सिर्फ एक दो दिन के लिए, जब तक मैं अपने होटल नहीं पहुंच जाता। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतने के दो दिन अच्छी तरह बिता सकूं, बस।
1: सचमुच ये आदमी मुसीबत में है, इसकी मदद करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मेरे पैसे जरूर लौटा देगा।
0: मिस्टर गोटी, अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं।
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए साइमन साहब, मुझे पूरा विश्वास है मैं आपकी मदद जरूर करूंगा।
0: हाँ। शुक्रिया।
1: हाँ, शुक्रिया।
0: इस भलमनसाहत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप फिर कुछ सोचने लगे?
1: हाँ, इस बार जरूर कुछ सोच रहा हूँ। साइमन साहब
0: जी,
1: आपने कहानी तो विश्वास करने लायक सुनाई है,
0: कहानी,
1: लेकिन इसमें एक कमजोर कड़ी है। वो खासी कमजोर कड़ी है।
0: मैं कुछ समझा नहीं।
1: साइमन साहब, आप वो साबुन नहीं दिखा रहे हैं जो आपने खरीदा था? मैं वो साबुन देख सकता हूँ?
0: वो साबुन की टिकटिकिया? हाँ, मेरी जेब में होनी चाहिए। अभी दिखाता हूँ।
1: यहाँ इस जेब में?
0: हाँ, इसमें भी नहीं है।
1: कोट की सारी जेबें अच्छी तरह देख लीजिए। हाँ,
0: वही देख रहा हूँ। यहाँ भी नहीं है, कहीं नहीं है। लगता है वो साबुन की टिकिया भी कहीं खो गई।
1: एक ही दिन में अपना होटल भूल जाना और साबुन भी खो देना,
0: जी
1: ये कुछ विश्वसनीय नहीं लगता साइमन साहब।
0: आप मेरी बात
1: आपको कोई ठोस कहानी गढ़नी चाहिए थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। ये कहानी तो पिस हो गई साइमन साहब। अब किसी और आदमी से पैसे ऐंठना चाहो तो कोई ठीक बहाना बनाइएगा, वरना। अरे कहाँ चल दिए साइमन साहब, कहाँ चल दिए? अरे रुकिए तो। बेचारा कहानी तो बहुत बढ़िया गढ़ी थी। एक एक हिस्सा ऐसा था जिस पर कोई आंख मूंद कर विश्वास कर लेता, लेकिन साबुन खरीदने के प्रसंग ने सब गड़बड़ कर दिया। अरे ये प्रसंग ना होता या साबुन की एक टिकिया भी जेब में डाल लाता तो धोखा धड़ी के धंधे में आज उसकी प्रतिभा का सिक्का जम जाता। लगता है इस धंधे में अभी नौसिखिया है। अरे ये मेरे पांव से क्या चीज टकराई? क्या है ये कागज में लिपटी हुई कोई गोल सी चीज? साबुन की खुशबू भी आ रही। अरे ये तो साबुन की टिकिया है। अरे ये जरूर साइमन की जेब से गिर गई होगी। इसका मतलब उसने सचमुच साबुन खरीदा था। ये तो अनर्थ हो गया। मैं अभी जाकर उस मुसीबत जदा की मदद करता हूँ। अभी वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। अभी जाता हूँ।
2: साइमन साहब, मिस्टर गोटी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मेहरबानी करके मुझे मुझे जाने दीजिए।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
2: ये आप क्या कह रहे हैं?
1: देखिए, आप जैसे भले आदमी पर शक किया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। दरअसल मुझे आपकी कहानी की सच्चाई का मुख्य गवाह मिल गया है।
2: गवाह?
1: हाँ, ये देखिए साबुन की टिकिया। हा? आपकी कोर्ट से गिर गई होगी। देखिए मुझे ये वहीं उसी बेंच के पास पड़ी मिली।
2: हाँ वो पता नहीं कब जेब से गिर गई। वो परेशानी में कुछ ध्यान ही नहीं रहा।
1: खैर जो हो गया सो हो गया। अब मुझे आपकी मदद करने में देर नहीं करनी चाहिए।
2: जी
1: मैं एक गिन्नी उधार देता हूँ मैं आपको। ये इससे काम चल जाएगा आपका?
2: जैसा आप ठीक समझें।
1: नहीं नहीं नहीं, आपको दिक्कत हो सकती है।
2: हाँ।
1: मैं आपको दो गिन्नियां दे देता हूँ। उम्मीद है अब आपका काम आराम से चल जाएगा। ये लीजिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे भारी मुसीबत से बचा लिया। अब मैं जान। अरे हाँ, आप अपना पता दे दीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके घर आकर ये उधार चुका दूंगा।
1: अरे नहीं नहीं साइमन साहब, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आप आराम से मेरे पैसे लौटा दीजिएगा। ये लीजिए, ये रहा मेरा कार्ड।
2: थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब इजाजत दीजिए।
1: अच्छा, अरे अरे साइमन साहब, ये साबुन तो लेते जाइए।
2: लाइए। थैंक यू वेरी मच।
1: और देखिए अब इसे दोबारा मत खो देना, ये आपके आड़े समय में काम आया है। बाय बाय बाय। बेचारा मेरे इस व्यवहार से कितना खुश हो गया। चेहरे पर निराशा की जगह उत्साह दिखाई देने लगा था। शुरू में मैं उसके साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी बरत रहा था, ये अच्छी बात नहीं थी। मैंने अपनी गलती सुधार ली, ये अच्छा ही हुआ। अरे बाप रे, 8 बज गए। अरे वहां पार्क में फिलिप पता नहीं कब से मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे फौरन वहीं पहुंचना चाहिए। चलता हूं मैं।

0: फिलिप, फिलिप, फिलिप माफ करना, मैं जरा बाजार की तरफ निकल गया था। अब आए, ये तो फिलिप नहीं, कोई और ही साहब है। ओ, ये तो वही बुजुर्गवार हैं जो थोड़ी देर पहले मेरे साथ यहाँ बैठे थे। लेकिन ये बेंच के नीचे झुककर क्या ढूंढ रहे हैं? बुजुर्गवार, लगता है आपका कुछ खो गया है।
1: हाँ, मेरी साबुन की टिकिया खो गई है।
0: क्या, साबुन की टिकिया?
1: हाँ, अब मैंने जो सामान खरीदा था,
0: हाँ,
1: उसमें एक साबुन की टिकिया भी थी। वो कहीं गिर गई।
0: लेकिन वो
1: मेरा ख्याल है वो यहीं गिरी है। बेंच पर बैठते समय थैला टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा और टिकिया नीचे गिर गई। चिंता न करो,

0: यहाँ गिरी है तो मिल ही जाएगी।
1: इसका मतलब वो साबुन की टिकिया उस धोखेबाज की नहीं इन बुजुर्गवार की थी। मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी, उस धोखेबाज को साबुन की टिकिया के चक्कर में एक नहीं दो दो गिनियां दे दी। आज ही आज मैं अपना दूसरा नुकसान कर बैठा। इस गलती के लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा।

श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपने सुना नाटक सावन की टिकिया। साकी के लिखे नाटक का ये हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण था। रूपांतरकार शैलेंद्र, निर्देशक विजय दीपक छिब्बर। आकाशवाणी दिल्ली की इस प्रस्तुति के साथ ही अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

बजते बजते आज अचानक मेरी बंसी टूट गई। इस छोटी सी बात पे मुझसे राधा रानी रूठ गई।